0: गोल्ड। CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में Houseful shows के बाद अब पहली बार London में देखिए आशुतोष राणा को as रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की undiscovered stories live on stage 9 से 12 जुलाई Eventim Apollo Hammersmith Hamare Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner like रेडियो।
2: श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके वार्मली इनवाइट्स यू टू रथ यात्रा 2026, अ डिवाइन सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। सैटरडे 18 जुलाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नवनाथ सेंटर हीज UB3 1AR में भजन, आरती, सैक्रेड रथ पुलिंग और प्रसाद का लाभ जरूर ले। इवेंट फ्री है लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। फ्री पार्किंग भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के साथ अवेलेबल होगी। रजिस्टर नाउ एट srijagannath.uk/events/rath-yatra2026। जय श्री जगन्नाथ।
3: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साफो ट्रेवल, at all protected.
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
4: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
5: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
3: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
5: टू बुक कॉल our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
3: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
0: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

पास जैसी हो न हो किस्मत भी वो है की न टीनी इस कदर हो कि मेरी मालूम हो बेटी

कई खूबियों वाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजरों वाली ओ गौरी गौरी गौरी ओ गौरी हक काली जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर बस मिल जाए तो फिर ओ

नाजकी गपाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजर वाली वो गोरी गोरी गोरी वो गोरी हाथ के काली जो जहां से वाली मिल जाए तो फिर वक्त मिल जाए तो फिर एक चाची चाली

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पक्षियों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती सनबंध।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर्फ।

हत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क
4: Two businesses.
5: Same town.
4: Same service.
5: One appears on page one of Google.
4: The other doesn't.
5: Guess which one gets the customer?
4: The truth is brutal.
5: The first page of Google gets the business.
4: Everyone else gets what's left.
5: So here's the real question.
4: When your customers search for what you sell, do they find you?
5: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
4: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
7: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gamapa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
10: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: Kajal's Couture for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
4: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
3: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
4: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
3: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
4: Visit kajalskachor.co.uk.
5: आपके सामने एक रेड बटन है
6: दबा दिया
5: नहीं दबाना था
7: The madness is back. धमाल 4.
8: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा
7: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
9: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी
7: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
10: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आके कैसे आ जाता
11: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
12: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
13: 23 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Come on, England. Roar it. Score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave. Gold Breakfast with Kajal.

0: Kajal's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
1: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
6: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
5: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
7: 10 days to Turkey guaranteed. Departure on 18th September. Book early to avoid disappointment. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Like a Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
8: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.
9: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Like a gold.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: रेडिंग तैयार हो जाइए. रेडिंग मेला आ रहा है पाम पार्क में 1st और 2nd अगस्त. दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक एंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेस बाय हरभजन तलवार, मैस बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे. एंट्री बिल्कुल फ्री. मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701. रेडिंग मेला पाम पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Radio.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. It's summer on the Leica Radio Network.
8: Gold Breakfast with Kajal.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Safal Travel, auto protected.
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
2: WhatsApp message Leica Gold now on 0744-232323. Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.
5: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: स्वागत है आप सबका मनोरंजन की दुनिया में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड रेडियो है और इस रेडियो पर अब शुरू हो रहा है मनोरंजन प्रोग्राम। बृहस्पतिवार थर्सडे 2026 वर्ष के जुलाई महीने की 9 तारीख और वक्त है भाई समय यहां ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं। माय नेम इज रवि शर्मा। पहले धन्यवाद दें काजल को, शिल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। और फिर खोलें डायरी, शुरू करें शायरी। भाई आज बृहस्पतिवार के दिन कुछ खास गीत जगह पाते हैं इस कार्यक्रम में और ये गीत कलम को आंसुओं में डुबोकर लिखे जाते हैं। जिंदगी तो है सुलगती हुई गीली लकड़ी, न जला सकते हैं जिसको न बुझा सकते हैं। घर छुड़ा सकते नहीं गम से हमारा दामन, तो आप खुशियों से दिलासा तो दिला सकते हैं। जिंदा रहने के लिए कोई बहाना न सही, हमको मरने का कोई तरीका तो बता सकते हैं। रात दिन जिसका ठिकाना है रगे जहां के करीब, सोचना यह है कि उसे कैसे भुला सकते हैं।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
0: रात दिन जिनका ठिकाना है रगे जहां के करीब, सोचना ये है कि उन्हें कैसे भुला सकते हैं।

0: इस तरह से शुरुआत होती है कार्यक्रमों की भाई, बैक टू बैक गीत परोसे हमने और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे बृहस्पतिवार के रंग बिरंगे गीत। पहला गीत था फिल्म पारस मणि से, वो जब याद आए बहुत याद आए। और अभी जो गीत आप सुन रहे थे, दर्द सहेंगे कुछ न कहेंगे, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म साजन का घर। गाने वाली आवाजें मनहर उदास और साधना सरगम की थी। और बहन भाइयों, अब उस मोड पर आ गए हैं कि हम आपको पाउंड का रेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि 10:30 बजे करीब आप सुनेंगे आज की खबरें, और भाई 11 बजे के समाचारों के उस पार होंगे विचार, यानी आज का विचार चिंतन होगा, और दोपहर बाद 1 बजे तक हमारी आपकी जो है ये मुलाकात जारी रहेगी। माई नेम इज़ रवि शर्मा एंड इफ यू हैव जस्ट ज्वाइंड लाइक अ गोल्ड, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यू के आज का रेट बता रहे हैं भाई। अगर आप पैसे भिजवाना चाह रहे हैं अपनों को भारत में, तो एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग 127.5 रुपीज, 127.50 रुपए भारतीय मुद्रा में। और हाउ यू कैन सेंड, यू नो यू कैन सेंड बाय विजिटिंग टू एनी ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द SBI योनो मोबाइल ऐप, TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: और साहब रैक लॉ की बदौलत आप तक पहुंचाते हैं हम ये जानकारी। फुटबॉल का वर्ल्ड कप यानी महाकुंभ जो है वो चल रहा है, और उन टीमों का तो भाई फैसला हो चुका है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। अब क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में पहुंचने की मारामारी होगी टीमों के बीच, और आज पहला मुकाबला हो रहा है शाम 9 बजे फीफा वर्ल्ड कप का, ये मैच खेला जाएगा फ्रांस और मोरक्को के बीच। देखते हैं भाई दोनों टीमों में से किसको टिकट मिलती है सेमीफाइनल की। 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं, अब इनमें से 4 पहुंचेंगी सेमी में, और फिर 2 टीमों के बीच होगा फाइनल मुकाबला। और इस पूरे सफ़र में हम आपके साथ रहेंगे, आपको जोड़े रखेंगे एक फुटबॉल ग्राउंड से। हाँ, डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ़ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Yeah, like a good

0: Capco food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: मॉम, आई एम आउटसाइड। Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और लीजिए साहब, ये गीत हमें ले आया है खबरों के नजदीक। 10:30 हैं ब्रिटिश घड़ियों में, वक्त हो गया है समाचारों का।
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने शहबाज शरीफ को लेकर कहा है कि हम उनकी हिमायत को नहीं भूलेंगे। टीएमसी के फ्रीज किए गए बैंक खातों को लेकर ममता बनर्जी गुट को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अमेरिका के ताजा हमलों के बाद ईरान ने कहा है जवाबी हमले झेलने होंगे उनको। और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा H-1B वीजा धोखेबाजों के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा संकट और अनिश्चितता को लेकर के एक बयान दिया है। लीजिए विस्तार से सुनिए। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के फ्रीज किए गए बैंक खातों को लेकर ममता बनर्जी गुट को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के फ्रीज किए गए 3 बैंक अकाउंट्स के मामले में आज ममता बनर्जी गुट को ये राहत दी है। खातों के संचालन के लिए एक स्पेशल अधिकारी अपॉइंट किया गया है। ममता गुट इस अधिकारी के जरिए जरूरी खर्चों के लिए उन अकाउंट से रकम निकाल सकती है। तेल बेचने वाला रूस खुद तेल संकट में फंसा है। दुनिया भर के कई देशों को तेल बेचने वाला रूस आजकल खुद ही एनर्जी संकट से जूझ रहा है। रूस के गैस स्टेशनों पर लंबी कतारें लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ ही लोगों में डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा और अनिश्चितता भी बढ़ती जा रही है। खबरों के मुताबिक कई महीनों से यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध में तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है और पूरे रूस में ईंधन आपूर्ति यानी फ्यूल सप्लाई को मुतासिर किया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ यूरेनियम सप्लाई समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसे बेहद इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इस समझौते पर बातचीत 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने कहा कि आज हम साल 2015 के ऑस्ट्रेलिया भारत न्यूक्लियर कोऑपरेशन समझौते के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को यूरेनियम एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था पर दस्तखत की पुष्टि कर सकते हैं। ईरान में खुजेस्तान प्रांत के गवर्नर दफ्तर से ये खबर आई है। गुरुवार सुबह आज अहवाज में हुए अमेरिकी हमलों में 3 लोगों की मौत की जानकारी दी गई है। इन हमलों में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। उनके अनुसार इससे हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। बताया गया है कि अहवाज शहर पर हुए हमलों के खिलाफ हथियारबंद बलों के रक्षात्मक अभियानों में रिवॉल्यूशनरी गार्ड एरोस्पेस फोर्स के एक जवान की मौत हो गई है। ईरान पर अमेरिका की ओर से नए हवाई हमले शुरू करने के बाद खाड़ी क्षेत्र के कई देशों से हमलों की खबरें सामने आई हैं। जवाब में ईरान भी अमेरिकी ठिकानों पर जो कि मिडल ईस्ट में है उन पर अटैक कर रहा है। इससे पहले बहरीन की होम मिनिस्ट्री ने ऐसे हमलों के बारे में एक्स पर कई पोस्ट की। उसने लिखा कि सुरक्षा की वजह से अलार्म एक्टिव कर दिया गया है। हम देश के लोगों से आग्रह करते हैं कि वे शांत रहें और करीबी सिक्योर ठिकानों पर शरण दे दें। भारत से आने वाली खबरों में उत्तराखंड के जोशी मठ स्थित ज्योतिर्मठ यानी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो होगी ही, जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब होगी। ईरानी राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने शहबाज शरीफ को लेकर के कहा कि हम उनकी हिमायत को नहीं भूलेंगे। मसूद पेजिशकान ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा है कि हम उनके समर्थन को नहीं भूलेंगे, ईरान और पाकिस्तान दोनों ही देश हमेशा एक दूसरे के आंसू और खुशी के साझेदार रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर दिवंगत आयतुल्लाह को श्रद्धांजलि देने, खिराज अकीदत देने के लिए दुनिया भर के नेता पहुंचे थे। आयतुल्लाह अली खमेनेई साल 1989 से लेकर इस साल फरवरी में अपनी मौत तक इस इस्लामी गणराज्य ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने साल 2026 में भारत की आर्थिक बढ़ोतरी दर 6.4 रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिका के लिए ये अनुमान 2.3% जबकि रूस के लिए 1% रखा गया है, भारत के लिए 6.4%। IMF ने इस साल के वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.0% और साल 2027 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका का H-1B वीजा असाधारण प्रतिभा वाले यानी बहुत टैलेंटेड वाले लोगों के लिए है, धोखेबाजों के लिए नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में मौजूदा दौर में ऊर्जा संकट यानी एनर्जी संकट, सप्लाई चेन में रुकावट और दुनिया भर में फैली अनिश्चितता को लेकर के बयान दिया।

0: माल ढोने वाले हवाई जहाज का मलबा और मारा के तट से 53 समुद्री मील दक्षिण में मिला है। पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तानी समुद्री सिक्योरिटी ने समुद्र में 12 घंटे के अभियान में मलबे की तलाश की। अब पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इस तैयारे के चालक दल को खोजने के लिए बचाव अभियान अभी भी चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने बलोच मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता डॉक्टर मेहरंग बलोच को सुनाई गई उम्र कैद की सजा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे घोर नाइंसाफी बताया है और कहा इस सजा से बलूचिस्तान में स्वतंत्र आवाजों के दबाने और नागरिकों के लिए काम करने की संभावना कम होने का खतरा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में कई लोगों के जबरन गायब किए जाने के मामलों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाने वाली मुख्य ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता मेहरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
0: और आइए लौट आइए फिर से संगीत की ओर। बीन के लहरे पर नागिन तक झूमने लगती है, हम अपने आप को कैसे रोक पाएंगे? पर इस लहरे के साथ किसकी तलाश जारी है?

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Like a gold.
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
3: वेरी गुड मॉर्निंग साउथ ऑल ट्रेवल वालों का पैगाम आपके नाम पे फिर याद दिला दे साउथ ऑल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
4: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: विजिट travelhubworld.com
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
7: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
6: Exclusive radio partner, Like रेडियो
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं
8: SonaTours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call SonaTours on 0208-951-0111.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English but louder.
10: 4 beers, please, garçon!
9: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
1: Ye hai. Like a gold.
11: Like a gold.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। खुशामदीद जी आया नो। ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं। ये समय है चिंतन का, पर पहले अगर आपने रेडियो भी सुनना शुरू किया है तो भाई मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम है रवि शर्मा और मैं दोपहर बाद 1 तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस समय तैयार हूँ आपको चिंतन सुनाने के लिए। थॉट फॉर द डे, आज का विचार। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं डॉक्टर अनुराधा पांडे का भेजा आलेख। अनुराधा जी हिंदी संस्कृति अधिकारी हैं भारतीय उच्चायोग में और कहती हैं कि जिंदगी में कुछ क्षण कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें मौका देते हैं अपनी इंसानियत दिखाने का। कभी कभी कोई घटना हमें याद दिला जाती है कि दुनिया केवल देशों का नक्शा नहीं है बल्कि ये इंसानों का एक परिवार भी है। भारत में एक कहावत कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम, और भारत इसे चरितार्थ भी करता है। कहती हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, ये पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ने का एक मंत्र है। हालांकि दुनिया को तोड़ने के लिए भी कोशिशें जारी रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम वो नहीं हैं, जो वो हैं वो अलग हैं, हम अलग हैं, हमारी पहचान अलग है, हमारा मजहब अलग है, हमारी भाषा, हमारा खान पान, पर कोई तो चीज है जो हमें जोड़ती है। देखिए डॉक्टर अनुराधा कहती है कि वेनेजुएला में भूकंप आया, जलजला आया और थोड़ी ही देर में अनेकों घर उजड़ गए, जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, लोग बेघर, कुछ जख्मी हुए, कुछ दुनिया से ही विदा हो गए। ऐसे वक्त में एक बड़ा सवाल उठा, क्या कोई हमारी पुकार सुन रहा है? क्या है कोई हमारा अपना जो हमारा ये दुख दर्द बांट सके, हमें इस मुसीबत से निकाल सके? और तभी हजारों किलोमीटर दूर भारत से मदद के लिए हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, दवाइयां पहुंचती हैं, डॉक्टर पहुंचते हैं, राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। एक अभियान चलाया भारत सरकार ने, नाम रखा ऑपरेशन अमिस्ताद। अमिस्ताद का मतलब है दोस्ती, मित्रता। पर यह सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं था, यह उस भारतीय चेतना का परिचय था जिसने सदियों पहले कहा था वसुधैव कुटुंबकम। यह धरती एक परिवार है, वसुधा धरती को कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। सोचिए वेनेजुएला में जब किसी पीड़ित के घाव पर भारतीय डॉक्टर पट्टी बांधता है तो वो उसका धर्म, उसकी भाषा, उसकी राष्ट्रीयता नहीं देखता, उसका मजहब नहीं पूछता, वो सिर्फ एक पीड़ित इंसान को देखता है। शायद यही मानवता का सबसे सुंदर रूप है। आज साइंस ने दूरियां घटा दी हैं, पर क्या हमारे दिल भी नजदीक आए हैं? वेनेजुएला में भूकंप आया, जलजला आया और भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। अगर हम किसी जरूरतमंद के साथ मुसीबत के समय खड़े हो सकते हैं तो यही इंसानियत है। आइए आज हम भी एक संकल्प लें कि जहां भी पीड़ा दिखाई दे, जहां भी तकलीफ दिखाई दे, हम संवेदना लेकर पहुंचे। आखिर इंसानियत की पहचान यही है, इंसान इंसान के काम आता है, ना कि उसकी तकलीफें बढ़ाता है।

किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, वरना तो भाई कहने को सब है लेकिन इंसान वही होता है जो किसी इंसान के काम आता है, इंसानियत दिखाता है। आज का चिंतन, आज का विचार आप सुन रहे थे।

0: व्यक्ति में जाति धर्म नहीं देखते, ऊंच नीच नहीं देखते, रंग रूप नहीं देखते। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमयी पश्यति, जो सब में मुझे देखता है सर्वत्र मेरा ही दर्शन करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, वो मेरा ही स्वरूप है। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें भिजवाया डॉक्टर अनुराधा पांडे जी ने, जो भारतीय उच्चायोग में हिंदी संस्कृति अधिकारी हैं, और कहती हैं कि जो घटना वेनेजुएला में घटी और जो रिस्पॉन्स भारत की ओर से मिला, इंसानियत का प्रतीक बन गया। कितनी तेजी से हवाई जहाज राहत सामग्री लेकर, डॉक्टरों की टीम लेकर के वहां पहुंचे, और कितनी तेजी से उन्होंने एक वहां पर हॉस्पिटल सेटअप किया। वहां के हेल्थ मिनिस्टर विजिट करने गए और हृदय से आभार प्रकट किया भारतीय लोगों का। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई संकट दिखाई पड़ता है, मालूम होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है वो सच्चा इंसान कहलाता है। आज का चिंतन, आज का विचार, उसके लिए आपने एक लोक गीत भी सुना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहती है, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहती है। अपना दर्द तो सबको महसूस होता है, जो दूसरे का दर्द महसूस कर सके वो संत होता है, संत स्वभाव होता है। बहुत सारा भाई, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत सारे रिमार्क्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं चिंतन के विषय में। और फतेह पटेल कहते हैं, बेहद बढ़िया कार्यक्रम रवि भैया, खूबसूरत विचार। रानी स्लाव से, विजय बैटरसी से, हंसा वोरा और भारत से, केतकी चिंतन पसंद कर रही हैं। अर्जुन टोरंटो से, उल्लास थैंक यू वेरी मच। पटेल जी आपका भी संदेश मिला है, थैंक यू वत्सला। सुंदर अभिव्यक्ति श्लोक के माध्यम से। देशराज बैसन साहब कहते हैं, मनुष्य होना नहीं बल्कि मनुष्यता, दया और सहानुभूति से ही मानवीय गुणों को धारण करने वाला मनुष्य होता है, स्वार्थ से ऊपर उठकर जो परमार्थ के लिए काम करता है। क्रोडन से महेंद्र पटेल, सुनीता शर्मा जी, पम्मी स्लाव से, निर्मला नीला चौधरी, राजीव पटेल, अनिल सोनी वियना में, भारत गंगाराम सहर, और भाई वो सब लोग जो चिंतन की प्रशंसा में लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। याद दिला दूं, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे के खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं भाई, आज का रेट भी अच्छा है। अगर अपनों को पैसा भिजवाना चाहते हैं भारत में, तो रेट नोट कीजिए। टुडे SBI UK आर गिविंग 127.5 रुपीज फॉर वन पाउंड, 127.50 रुपए का रेट आज चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI मोबाइल ऐप। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: फुटबॉल अपडेट जी बता देते हैं आपको कि भाई महाकुंभ चल रहा है फुटबॉल का, और ऐसे में क्वार्टर फाइनल टीमों का तो पता चल गया, अब सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें पहुंचेंगी। आज से मुकाबले भाई सेमीफाइनल के लिए मारामारी करके भाई शुरू हो रहे हैं। फ्रांस वर्सेस मोरक्को, इनकी भिड़ंत हो रही है। पहला मैच रात 9 बजे आज खेला जाएगा, और भाई जो भी नतीजा होगा, जो भी मैदान में होगा, हम आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ लाइव का रेडियो नेटवर्क पर, लाइक अ गोल्ड पर और भाई हमारे दूसरे स्टेशन पर। हाँ, डोंट फॉरगेट यू कैन गेट यूर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइक अ। रैक लॉ ये फुटबॉल की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और भाई याद दिलाते हैं कि 15 मिनट का कानूनी मशवरा बिल्कुल मुफ्त आप ले सकते हैं अगर आप उनसे बात करते हुए लाइक अ मेंशन कर दें तो।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Leica Gold.

0: What a song, भाई दर्द भरे गीतों की जो अभिव्यक्ति बड़ी ज़बरदस्त होती है, सीधे दिल में उतर जाते हैं और दर्द भर जाते हैं। वेल, दो गीत हमने बैक टू बैक सुनवाए आपको। पहला गीत दिल का खिलौना हाय टूट गया, वसंत देसाई की बनाई धुन पर लता जी की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था शायद गूंज उठी शहनाई। और अभी जो गीत आप सुन रहे थे ये खिलौना फिल्म से था, संजीव कुमार पर पिक्चराइज हुआ था और संजीव कुमार का बड़ा सशक्त अभिनय भाई उसी फिल्म में नहीं, एक दो फिल्मों में और जहां उन्होंने वो पागल का रोल किया तो सब जबरदस्त अभिव्यक्ति थी, उनके एक्सप्रेशंस थे। संजीव कुमार का जन्मदिन है। हाँ हरि भाई, आप जहां भी हैं, दुनिया में तो नहीं है, फिल्मी दुनिया में भी नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में हैं और हमेशा रहेंगे। हरि भाई, क्या कहें आपके बारे में, आपका अभिनय और एक आध गीत, क्योंकि ज़्यादा जानकारी तो बाली भाई लेके आते हैं लेकिन एक आध गीत हम सरका देते हैं, ये बताते हैं कि भाई आज संजीव कुमार साहब होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। 1938 में सूरत में जन्मे थे हरि भाई। और आज भाई जन्मदिन मनाने वालों में संगीता बिजलानी, उर्वशी ढोलकिया और कैसे भूल सकते हैं हम एक महान अभिनय अभिनेता, क्या कहें भाई, निर्देशक भी, वन एंड ओनली गुरुदत्त साहब भी आज ही के दिन जन्मे थे, 9 जुलाई 1925 में बंगलोर में जन्मे थे, आज उन्हें भी याद करते हैं। इसके अलावा साहब और भी कई लोगों के जन्मदिन आज, तबस्सुम का नाम सुना आपने, अरे साहब क्या ज़बरदस्त मंच संचालिका थी वो, स्टेज पर आएँ या फिर रेडियो टीवी पर कोई कार्यक्रम चलाएं तो भाई लोग उनकी आवाज़ के दीवाने थे, अभिनेत्री भी थी, कई गुण थे उनमें। और हमारे देशराज बैसन साहब याद दिलाते हैं कि क्या पर्सनालिटी थी उनकी, तबस्सुम जो है उनके पिताश्री मिस्टर सचदेव ने उनका नाम मुस्लिम रखा था क्योंकि उनकी पत्नी मुस्लिम थी, तबस्सुम नाम उन्होंने रखा, लेकिन उनकी पत्नी ने अपनी बेटी का नाम रखा था किरण, किरण सचदेव। तो भाई पिता उनके क्योंकि मिस्टर सचदेव थे, अयोध्यानाथ सचदेव, वरे यू नो सात्विक नेम, तो उन फ्रीडम फाइटर थे वो, तो उनको भी याद कर लें भाई, उनका भी जन्मदिन आज ही पड़ता है। और जन्मदिन मनाने वालों में और भी कई नाम हैं, आज वेंकटपति राजू ये क्रिकेटर हैं, इनका भी जन्म 1969 में आज ही के दिन हुआ था। और आज जन्मदिन मनाने वालों में मैं देखता हूँ और किसका नाम है भाई, आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है आज तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। पता चला है कि आज सुखबीर सिंह बादल भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, फरीदकोट में जन्मे थे भाई, ये पंजाब के क्या कहें कि पॉलिटिशियन हैं। और सुखबीर सिंह बादल 9 जुलाई 1962 में जन्मे थे। बादल साहब आपको भी हैप्पी बर्थडे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra podcast update.
3: और याद दिला दें आपको भाई, लाइका एक्स्ट्रा पर हमारा नया एपिसोड जो है पॉडकास्ट का आ चुका है, राइज इन विमेंस क्रिकेट। भाई अब टीमें बढ़ रही हैं विमेन क्रिकेट में भी, और अच्छी खिलाड़ी ने सामने आ रही हैं। पहले हम बैट्समैन कहा करते थे, अब बैटर कहते हैं, क्योंकि बैट्समैन अब महिला क्रिकेट में तो बैट्समैन नहीं होंगे ना, बैट्समैन होंगी, लेकिन अब बैटर जो है वो सही टाइटल है बैटिंग करने वाले के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड कप भी होता है, बड़ा कामयाब होता है, अट्रैक्ट कर रहे हैं दर्शकों को, और क्रिकेट जगत में महिला टीमें बढ़ रही हैं। तो भाई लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पर जो है हमारा ये जो नया एपिसोड 23 है, दीप राजा द्वारा होस्टेड, इसको देखिए और महिला क्रिकेट के बारे में और जानकारी लीजिए और दिलचस्प बातें जानिए। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: ये है
5: Leica Gold.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
8: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
9: आपके सामने एक रेड बटन है,
10: दबा दिया।
9: नहीं दबाना था।
11: The madness is back, धमाल 4।
12: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
11: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। Return in धमाल 4, directed by इंदिरा कुमार।
13: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी।
11: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
14: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता।
15: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show

0: Saregamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
6: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Like a Goon. London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par. DAB Digital Radio par Alexa pe bolo play Like a Gold. Aur online suno likeagold.com pe.
6: The sun is out. And so are the summer hits on Like a Gold.

0: अगर इसे समझ सको तो हमें भी समझाना, क्योंकि हमारी समझ से तो बाहर है। अरे सुनीता शर्मा जी, आपने बड़ी खूबसूरत तस्वीर भेजी है हमारी,
1: रवि शर्मा,
0: लेकिन ये सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं है, साथ में मेरी पत्नी की तस्वीर भी आपने भेजी है। क्या बात है साहब, आपको देख के डर नहीं लगा? कहती है बहुत खूबसूरत है आपकी धर्म पत्नी, वन साइज सो हर फेस टू फेस मैनी ईयर्स अगो। चलो जी, अब आपने तस्वीर कहाँ से ढूंढ निकाली, लेकिन बहुत अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। क्या लिखा आपने, एक और सही सच्ची बात लिखी है, यू बोथ आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू, थैंक यू। और भाई निर्मल एंड कीरित, आपका संदेश मिला, कहते हैं आज तो कमाल कर दिया आपने, हैट्रिक ऑफ दुखी गाने, मज़ा आ गया। ये दुखी गाने इतने अच्छे क्यों लगते हैं? शायद दूसरों का दुख है ना, इसलिए हम उसे अपना बना लेते हैं, तो वो बहुत अपना लगता है, अपने दिल से लगा लेते हैं। खैर साहब, आज एक और दुखी गाना हमें लेकर के चलेगा, पर पूरा नहीं सुनवा पाएंगे, ये लेकर के चलेगा खबरों तक।

0: दोनों के दिल हैं, नहीं साहब दोनों के सुर हैं, बिल्कुल अवतार से जैसे ऊपर से प्रभु का या क्या कहते हैं उसको, सुरों की देवी का माँ सरस्वती का अवतार हो, वही आवाज़ में जादू है जैसे एक लता जी और दूसरे साथ में हो जगजीत सिंह जी, तो ऐसा गीत ऐसी गजल बनती है। तो साहब हमने दो गीत आपको सुनवाए बैक टू बैक, हर घंटे के प्रोग्राम की शुरुआत इसी तरह से होती है, और अब आपको हम बताने जा रहे हैं पाउंड का रेट, नोट कर लीजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 127.50 रुपए मैक्सिमम, 127.5 इंडियन रुपीज, एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द SBI योनो मोबाइल ऐप। TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Like a Gold.
2: Like a Gold.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
1: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 711,000 pounds.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Are we there yet?
4: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simzy before we left London.
4: Simzy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
9: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
10: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
10: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
10: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
16: और बहनों भाइयों, Artist of the Week इस सप्ताह हैं शकील बदायूनी। शकील साहब के भाई वैसे तो बहुत सारे गीत हम सुनवा चुके हैं आपको और भी इस सप्ताह में सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक गीत ऐसा है जिसने भाई इन्हें चोटी के गीतकारों में शामिल करवाया था और वो गीत, उस गीत के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और भाई उस गीत के लिए गायक कलाकार को भी, रफ़ी साहब को भी अवार्ड मिला और साथ साथ भाई नॉमिनेशन तो संगीतकार को और मतलब बहुत सारे अवार्ड बटोरे थे उस फिल्म ने जिसका गीत ये था, बहुत चर्चित हुआ, कहते हैं उस ज़माने में सुपर हिट से भी डुपर हिट और ऊपर हिट था ये गीत। फिल्म का नाम था 14वीं का चांद। शकील बदायूनी की कलम थी।
15: Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like
16: क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए भाई, वो गीत पहले सुनवाएंगे, बाद में डेयरी वैली वालों का संदेश और उनका गीत आएगा। ये है वो गीत, शकील बदायूनी ने लिखा, रवि ने संगीतबद्ध किया, रफी साहब ने गाया।

0: अपने जमाने का, और मैं तो कहूंगा हर जमाने का सुपर डुपर हिट गीत था चौदहवीं का चांद फिल्म से रफी साहब की आवाज, रवि का संगीत और शकील बदायूनी की कलम। साहब क्या गीत बना था ये, और इसे फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल का, 1960 में ये फिल्म आई थी। और उसके बाद तो साहब संगीतकार रवि के साथ शकील ने कई फिल्मों के गाने लिखे, जिनमें शामिल हैं घराना, घूंघट, गृहस्थी, नर्तकी, फूल और पत्थर, याद होगा आपको धर्मेंद्र मीना कुमारी की फिल्म, और दो बदन मनोज आशा पारेख। साहब 1966 में फूल और पत्थर और दो बदन रिलीज हुई थी, गाने दोनों फिल्मों के हिट थे, और इस सप्ताह के हिट लेखक हैं या कहें कि भाई आर्टिस्ट ऑफ द वीक गीतकार शकील बदायूनी साहब। बहुत सारे और भी गीत लाइंड अप हैं और दूसरे कार्यक्रमों में उनके लिखे हुए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: और आइए चलें भाई उस ऐतिहासिक दौर में जब ऐसे ऐसे गीत बनाया करते थे और लोग बड़े चाव से सुना करते थे, अब भी सुने जा रहे हैं ये गीत आरती फिल्म से।

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आरती फिल्म का गीत सुनवाया हमने भाई। किसी जमाने में ये भी बहुत लोकप्रिय गीत था और सच पूछिए तो कई वो क्या कहते हैं दूसरे फील्ड के लोगों ने भी इसका इस धुन का इस्तेमाल किया इस पर कुछ और भजन या गज़लें या कुछ अलग तरह के गीत लिख करके। रोशन ने बनाई थी ये यादगार धुन और साहब ये आरती फिल्म से लिया गया गीत था। आरती फिल्म जिसमें मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, अशोक कुमार और वही ऐसे ऐसे धुरंधर एक्ट्रेस जो है वो काम कर रहे थे। एंड आई थिंक व्हाट वाज द ईयर 1962 में ये फिल्म आई थी और खूब धूम मचाई थी इसने। तो साहब इस तरह की फिल्में, इस तरह के गीत और इस तरह की बातें वैसे तो हमारे बाली भाई लेके आते हैं। उनका प्रोग्राम मेरे प्रोग्राम के बाद 1 बजे शुरू होगा तो भाई वो भी सुनिएगा। लेकिन फिलहाल हम एक दो सूचनाएं आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक तो भाई याद दिलाते हैं आपको कि हमारे साथ जो हैं जुड़े हुए हैं रागा सेन वाले बड़े ज़बरदस्त क्या कहते हैं हॉस्पिटैलिटी वाले वो केटर भी हैं और तो उनके बारे में हम बताते हैं कि वो हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साहब और भी बहुत सारी बातें कार्यक्रम में आगे शामिल हैं, जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ।
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
2: गीत संगीत भरे हुए हैं आज भाई शिकवों से, शिकायतों से, दर्द से, आंसुओं से। क्यों ना हो शिकायत भाई, जिसे दिल दे बैठे उसने कदर नहीं की।

फैमिली से इंदिरा जी कहती हैं कि आज तो सारे गाने मेरी पसंद के लगा रहे हैं आप। हाँ तो बिल भी आप ही को भिजवाऊंगा बता दूं। चंदू शाह कहते हैं कि लता जी और जगजीत सिंह की आवाज़ सुनवा करके धन्य कर दिया।

0: रेडिंग तैयार हो जाइए, रेडिंग मेला आ रहा है पामा पार्क में 1st और 2nd अगस्त दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक। इंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेज बाय हरभजन तलवार, मैस बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे। एंट्री बिल्कुल फ्री। मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701। रेडिंग मेला पामा पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Radio.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: दर्द भरे गीतों का दिन है भाई। वैसे किशोर कुमार साहब की आवाज में ये गीत आपको एक बार फिर से हरी भाई की याद दिलाएगा।
1: अपने जीवन की उलझन को
0: हरी भाई जरीवाला, संजीव कुमार।

भाई लखनऊ की सरजमी की तारीफ तो हो गई, लखनऊ की जुबान भी बड़ी मीठी है भाई, वो उर्दू वहाँ की कहते हैं बड़ी मशहूर है। अगर झगड़ा भी करेंगे ना तो इतना मीठा लगेगा वो कि भाई बस लड़ते रहने को ही जी चाहेगा। कैसे वो दो बच्चों में लड़ाई होगी तो उनके अब्बू जो शिकायत लेके आए एक के और कहते हैं देखिए जनाब आपके साहबजादे ने हमारे नूर नज़र को पीटा है, इजाज़त हो तो मैं आपकी सेवा में लड़ने के लिए हाजिर हुआ हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो दो चार गालियाँ निकाल लूँ। गालियानी साहब आप स्टूडियो से निकलिए। अरे ऐसा क्या भाई, स्टूडियो से जा रहा हूँ, स्टूडियो छोड़कर जा रहा हूँ, बाली भाई को ला रहा हूँ, नौकरी छोड़कर नहीं जा रहा हूँ।

0: two beautiful, pleasant songs, and we are remembering Sanjeev Kumar. Sanjeev Kumar's today 88th birth anniversary. Ji haan, the daring Sanjeev Kumar. Harihar Jethalal Chariwala. इनके पिताजी. अभी मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि 9th जुलाई को जन्मे हुए 1938 में इन सूरत. ही पास्ड अवे ऑन 6th ऑफ नवंबर 1985 इन मुंबई ओनली एट द एज ऑफ 47 एंड ही सफर्ड हार्ट अटैक्स इन 1976 1978 1983 एंड देन फाइनली 1985. अभी the winner of two national awards, Dastak film and Koshish. Dastak 1970 ki thi and Koshish 1972 ki. Aur Filmfare Awards, Best Supporting Actor of film Shikar 1969, usme police inspector ka jo role kiya tha, Dharmendra ji hero the. Best Actor of Andhi, yes Taliyan 1976 and Arjun Pandit 1977. अब nominations as a best actor, जहाँ पे मुझे लगा कि इस साल तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, was when I saw the film Khilona. लेकिन उनको award नहीं मिला. कोशिश 1974 की, उसमें national award मिला था लेकिन film fair award नहीं मिला था. शोले film 1976. अरे मैं क्या बोलूँ, अभी शोले में तो एवरीबडी वॉज एक्टिंग वंडरफुली एंड इनका जो किरदार उन्होंने निभाया दैट वॉज एक्सलेंट. लेकिन अमिताभ बच्चन भी थे, धर्मेंद्र जी भी थे एंड हमारे ऑफकोर्स अमजद खान भी थे. मौसम फिल्म 1977, यही है जिंदगी 1978, फिर सिर्फ जिंदगी 1978 की एंड देन देवता 1979. पति पत्नी और वो, जिसका आपने अभी गाना सुना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए एंड अंगूर फिल्म 1983 की. इन्होंने जो 9 रोल्स किए थे, पीपल डू डबल रोल ट्रिपल रोल, ही ब्रोक एवरीबडीज रिकॉर्ड. बेस्ट सपोर्ट नॉमिनेशंस में इनका त्रिशूल और विधाता, इन दोनों फिल्म में नॉमिनेशन फॉर बेस्ट सपोर्ट मिला था. लेकिन अभी भी आई स्टिक टू माय थॉट दैट खिलौना शुड हैव बीन एन अवार्ड फॉर हिम. अभी 19 इनकी एक 2013 में एक स्टैंप भी निकली थी एज अ रिकग्निशन. रिकग्निशन देखा जाए तो संजीव कुमार को आज भी बहुत बड़े पैमाने से याद किया जाता है. देर इज़ अ रोड इन इज नेम इन सूरत इनॉग्यूरेटेड बाई सुनील दत्त एंड देन अ स्कूल इन इज नेम इन सूरत इनॉग्यूरेटेड बाई मेयर कदीर के पीरजादा एंड देन एन ऑडिटोरियम 108 करोड़ का बनाया हुआ बाई सूरत म्यूनिसिपल काउंसिल इनॉग्यूरेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी on 14th of February 2014. Annual SK drama competition by Surat Municipal Corporation since 2015. Abhi inki career mein dekha jaye to as a stage actor with IPTA. IPTA is Indian People's Theatre Association since 1943. And then a debut in film Hum Hindustani. This chota sa role tha. एंड देन अ प्रोटैगनिस्ट इन निशान फिल्म 1965. देखिए आपने, यू विल बी अमेज टू सी हिम इन दैट वन. 1968 में संघर्ष विद दिलीप कुमार साहब एंड देन ऑपोजिट शम्मी कपूर एंड साधना इन सच्चाई. देन सम गुजराती फिल्म्स एज वेल. अब देखा जाए तो सारी फिल्मों में इन्होंने ऐसे ऐसे रोल निभाए थे. अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर. बोले तो he didn't mind playing roles that were non-glamorous, some beyond his age. 22 साल की उम्र में he played an old man. जी हाँ. And then ठाकुर in शोले, देखो कैसा रोल था. He acted as a एक 22 साल की उम्र में कौन सा रोल किया था इन्होंने, 60 साल का बुड्ढा, मैन विद 6 चिल्ड्रन, कौन सी फिल्म थी, डमरू, इट वॉज डायरेक्टेड बाय A.K. हंगल, एंड देन अर्जुन पंडित, वहाँ पे इनकी वर्सेटिलिटी नज़र आती है। खिलौना में क्या रोल निभाया था, नया दिन नई रात, इन्होंने 9 रोल एपिक परफॉर्मेंस इन्होंने जो की थी, एंड देन यही है जिंदगी, देवता, राम तेरे कितने नाम, थ्रिलर्स इन्होंने की थी, शिकार फिल्म दैट वाज अ थ्रिलर, उलझन वाज अ थ्रिलर, तृष्णा वाज अ थ्रिलर, कत्ल 1986 की, एंड देन कॉमेडी रोल्स जो किए थे, मनचली टाइटल सॉन्ग भी है ओ मनचली, एंड देन पति पत्नी और वो ठंडे ठंडे पानी में, देन बीवी ओ बीवी, एंड देन अंगूर, एंड देन हीरो, आई मीन व्हाट कैन आई से, विद राजेश खन्ना इन बंधन, आपकी कसम, आक्रमण, लेकिन दोनों में चढ़सा चढ़सी थी, ऑनेस्टली दे वर रियल राइवल्स एज फार एज करियर वॉज कंसर्न, एक्टिंग वॉज कंसर्न, एंड देन व्हेन ही पास्ड अवे राजेश खन्ना एक्चुअली क्राइड एंड सॉर्ट ऑफ सेड हाँ हमारी दुश्मनी तो थी लेकिन आई वुड हैव विश्ड हिम अ लॉन्ग लाइफ एंड ही वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर. More than 10 films were released after his demise, उनके जाने के बाद. इनके जो भाई थे, his younger brother Nikul had died before him, his elder brother Kishore died 6 months after him, and सबको heart के problems थे. On 6th of November 1985, he suffered a massive heart attack, and the result was death. We are remembering Sanjeev Kumar.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
0: Cravings to abhi badh rahi hai kyunki garmi ke dinon mein aamras जो मिलता है जैमिन का, इट्स सेकंड टू नन, बिलीव यू मी, आई हैव इट एवरी अदर डे. एंड नॉट ओनली दैट, मैंने जो गाने चुने हैं संजीव कुमार जी की ट्रिब्यूट के लिए, वहाँ पे आपने सुना के स्टार्टिंग में महेंद्र कपूर जी ने गाया, एंड देन उसके बाद किशोर दा ने गाया, अभी रफ़ी साहब गाएंगे उनके लिए, और उसके बाद मुकेश जी गाएंगे, एंड देन हम सबको इनकॉर्पोरेट करके हम ये आवर ट्रिब्यूट पूरा करेंगे. सो सुन लीजिएगा रफी साहब को.
3: आपके सामने एक रेड बटन है, दबा दिया. नहीं दबाना था.
4: The madness is back. धमाल 4.
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
4: Starring अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख and जावेद जाफरी. Return in धमाल 4. Directed by इंदिरा कुमार.
6: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
4: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
7: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आगे कैसे आ जाता.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
12: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
13: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
14: Two businesses.
15: Same town.
14: Same service.
15: One appears on page one of Google.
14: The other doesn't.
15: Guess which one gets the customer?
14: The truth is brutal.
15: The first page of Google gets the business.
14: Everyone else gets what's left.
15: So here's the real question.
14: When your customers search for what you sell, do they find you?
15: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
14: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
18: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
19: Come on, England. Roar it, score it. Bring the World Cup home. All the best to England from Leica Radio Network. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: खुश रहो।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: अभी ये काफी दुखी गाना जब था, संजीव कुमार के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ और फिल्म थी खिलौना। इनकी रोमांटिक लाइक देखी जाए तो आई थिंक ही वॉज रिजेक्टेड बाई मैनी ऑफ द हीरोइंस दैट ही फेल इन लव विथ, बट ही रिजेक्टेड वन ऑफ देम एज वेल। आई मीन ही रिमेन्ड सिंगल बट ही वॉज लिंक्ड टू हेमा मालिनी, फिर शबाना आजमी। शबाना आजमी की मदर ने ऑब्जेक्शन किया था। सायरा बानू, ही प्रपोज टू हर इन 1960s बट शी रिजेक्टेड हिम, बीइंग इन लव विद दिलीप कुमार हु शी मैरिड इन 1966। एंड देन सुलक्षणा पंडित फेल इन लव विद हिम हेड ओवर हील्स एंड ही रिजेक्टेड हर एंड शी रिमेन्ड अनमैरिड राइट अप टू हर डेथ। वी आर रिमेम्बरिंग हमारे संजीव कुमार ऑन हिज 88th बर्थ एनिवर्सरी। अभी मैंने गाने जो सुनाए अलग अलग सिंगरों के, अब मन्ना दा ने काफ़ी गाने गाए थे इनके लिए, लेकिन हमारी लाइब्रेरी में वो नहीं है। यशुदास जी ने गाया है, मैं सुनाऊंगा। भूपिंदर सिंह जी ने गाया था बीती ना बीता ही रहना, लेकिन 7 जुलाई को दिस सॉन्ग वॉज ऑलरेडी प्लेड ऑन रेडियो, सो आई कैन नॉट प्ले दी भूपिंदर सिंह जी का गाना। लेकिन दूसरे गाने मैं ज़रूर सुनाऊंगा, मुकेश जी के और हमारे यशुदास जी के। और जो वक्त बाकी रहा तो मैं रफी साहब का वापस सुनाऊंगा।
1: Cool music for a super hot summertime on Like a Gold. Up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons, from dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
11: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash, hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
10: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
11: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
10: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
0: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
12: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super currency hot update. Summer sponsored by LemFi Mobile Radio App. Network. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
3: And each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3398. Indian rupees 127.87, Pakistani rupees 372.32, Afghan Afghanis 86.41, and Kenyan shillings 173.12.
4: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Gold is currently trading at £98.68 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
13: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: सुनिएगा मुकेश जी को।

फिल्म अनामिका द फेवरेट ऑफ ऑल। अनामिका का जो संगीत दिया था वो राहुल देव बर्मन ने, आर डी बर्मन, एंड लिरिक्स बाय मजरूह सुल्तानपुरी। एंड मैंने जैसे गाने ढूंढे तो भूपेंद्र जी का एक गाना मुझे मिल गया जो पिक्चराइज हुआ था संजीव कुमार पे। फिल्म है मौसम, और मौसम का संगीत दिया था मदन मोहन जी ने, और गुलजार जी की लिरिक्स थी। एंड उसके बाद मैंने एक गाना ढूंढा, फिल्म ज्योति 1969, एस डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी की लिरिक्स, वो भी आप सुनते रहिएगा। सो नेक्स्ट सॉन्ग इज गोना बी मन्ना डे एंड लता मंगेशकर। मन्ना डे पिक्चराइज्ड ऑन संजीव कुमार, दिस सॉन्ग भूपेंद्र सिंह जी ने जो गाया, पिक्चराइज्ड ऑन संजीव कुमार। उसके बाद आखिरी गाना सरप्राइज़।

We have been doing a tribute of Sanjeev Kumar, 140 to 150 Hindi films. Yes. इनको हम आज के दिन कैसे भूल सकते हैं? Versatile actor.

कितनी है। नेक्स्ट सॉन्ग लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स। फिल्म है मन मंदिर, गाया किसने? मुकेश जी और लता मंगेशकर, लता मंगेशकर और मुकेश जी। पिक्चराइज्ड ऑन संजीव कुमार।

0: क्या गाया रफी साहब ने, फिल्म है भरोसा, पिक्चराइज्ड ऑन गुरुदत्त, म्यूजिक रवि, लिरिक्स राजेंद्र कृष्ण, 1963 की भरोसा।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: ये गाना हेमंत कुमार जी ने गाया लता मंगेशकर जी के साथ, फिल्म है बहू रानी 1963 की, संगीत है सी रामचंद्र का और साहिर लुधियानवी की, लिरिक्स गुरुदत्त।

0: फ्रेंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: मोस्ट मॉर्गेज ब्रोकर्स चार्ज यू अ फी, बट वी डोंट चार्ज यू अ पेनी एंड वी स्टिल पुट कैश बैक इन योर पॉकेट।
2: हियर्स हाउ इट वर्क्स। व्हेन यू रीमॉर्गेज थ्रू कैशबैक रीमॉर्गेजेस, द बैंक पेज अस अ कमीशन, वी टेक आवर शेयर एंड वी गिव द रेस्ट बैक टू यू एज़ कैशबैक।
1: नो फी, नो गिमिक्स, रियल मनी बैक, अ बेटर रेट एंड कैशबैक from a broker that costs you nothing.
2: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
3: Chawal ho best, sab kare test, Disha Rice ka hai zamana.
4: Disha Rice, now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash & Carry, Singsbury's, Kachha Bazaar, Sameer Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
5: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111. From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
6: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
7: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
8: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: जितने भी रंग थे सब।
1: रफी साहब और गीता दत्त, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल वॉल्ट्स नंबर, 12 o'clock फिल्म आउट ऑफ गुरुदत्त प्रोडक्शन हाउस। और ये आर पार, विच वॉज गुरुदत्त प्रोडक्शन।
0: दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम।
1: ओपन एयर का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स।

0: नहीं होती है।
1: म्यूजिक डायरेक्टर रवि, कितना प्यारा गाना है, राजेंद्र कृष्ण की लिरिक्स।
2: Like a Radio Network, broadcasting across Greater London.
1: This is the right song to end it with, Kagaz ke Phool.

गीता दास जी की आवाज, कैफी आजमी की लिरिक्स और एस डी बर्मन का संगीत। होप यू एंजॉय द ट्रिब्यूट ऑफ

0: ना जाने।
1: हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद जी का, फिल्म दुलारी 1949, लिखा शकील बदायूनी जी ने।
2: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइक अ गोल्ड।

0: जो रहूं तो।
1: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मबर्ट, प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया, ब्रिंगिंग ऑथेंटिक फ्लेवर्स टू योर टेबल एवरी डे। फाइंड जेमिन एट एशियन स्टोर्स नियर यू।
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: Search is changing.
5: Customers aren't just using Google anymore.
4: They're asking AI.
5: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
4: One business, one recommendation.
5: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
4: Will your business be the answer?
5: Or the one that got left behind?
4: The future of search has already started.
5: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
6: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
7: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
6: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
7: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
6: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
7: Visit Kajal's Couture.
8: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
9: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
8: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
10: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as DLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/DLC.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लिरिक्स लिखी वर्मा मलिक ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म है नागिन 1976 की। लेकिन अब बात आ रही है कि वी गॉट हैव सैंडी शाह ऑन ड्राइव टाइम एंड राजपतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स। आगे आप गाना सुनिए, बड़ा मजा आएगा। अमित कुमार और आशा भोसले।
1: मेकिंग समर फील बेटर, दिस इज लाइका गोल्ड।
2: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा।
0: राजेश रोशन।
3: मगर न जाने ऐसा क्यों लगा।
0: योगेश की लिरिक्स।
2: तुम्हें खिला है चांद दिन में रात हो गई।
0: बातों बातों में 1979।
2: न मैंने

And we end up with संजीव कुमार. फिल्म है बचपन, आए रे खिलौने वाला, रफी साहब का गीत. एंड सैंडी शाह हैज अराइव्ड. कल तक के लिए इजाजत, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस.

0: Best overall business of Wandsworth 2026. Come and find out why. 24 karat gold bars and coins without VAT at the lowest prices. Phone 0208-767-7547.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is Sandy Shah on Gold Drive.
2: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें. लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
3: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Laika Gold. Make it a date.

0: Drive with Sandy Shah. Oh yeah.
1: Like a Gold, traffic and travel.
2: This is Martin with your travel on the A4 Great West Road eastbound at the Hogarth roundabout. That earlier breakdown is now being cleared and traffic is starting to ease. Delays on the M4 onto the elevated section eastbound from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. A312 the Parkway all cleared up now southbound before the M4 Junction 3, but still slow on the A312 Church Road and Mandeville Road as you head from the White Hart roundabout to the Target roundabout and on to North Holt Station. A406 North Circular Road heavy in both directions as you head in towards the Hanger Lane to Arete. The Tube and severe delays on the Elizabeth line between Paddington and Heathrow Terminal 4 and between Paddington and Reading due to earlier overhead line problems. That's your latest traffic and travel.
1: Yeah, like a gold.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
4: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट. दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
7: साउथ हॉल ट्रेवल. Protected.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444 hour line.
9: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
10: Okay, Laura, from the top.
11: When your 9-year-old is an unexpected tuba prodigy, and now you want to support her cheek-puffing talent, be a step ahead with Barclays Premier. With personalised financial planning and a dedicated advisor. Barclays, backing your future.

0: Eligibility criteria apply. Investment products and services are provided by Barclays Bank PLC and its subsidiaries. Capital at risk.
1: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Leica Gold.
2: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: बट जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। हमारे एक बड़े ही प्यारे लिसनर हैं जिन्होंने मुझे याद दिलाया और कहा स्वागतम भाई आपका 12th ईयर का ये पहला शो है। एग्जैक्टली यस, सो यस, न्यू शो न्यू डे, कुछ नए से आप कुछ नए से हम। पूछे आप सबसे कैसे हैं आए सब, कैसे हैं आए सब नहीं कैसे हैं सब, क्योंकि जो मैसेजेस मैं पढ़ते पढ़ते आप लोगों से ये कह रही हूँ, मैंने सबसे पूछा है कि भाई थ्रिलिंग थर्सडे शो के लिए आप तैयार हैं क्या, तो सारे लोग कह रहे शो के लिए तो हम तैयार, लेकिन ये गर्मी ने, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी ने जान ले रखी हमारी बिल्कुल। बस बारिश आ जाए ना, अभी हमें भी ना भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अटेंडेंस रजिस्टर खोल चुके हैं, आप सभी अपनी अपनी अटेंडेंस यहाँ लगवा रहे हैं। थ्रिलिंग थर्सडे मनाएंगे आप और हम साथ में। सो हमारे साइलेंट लिसनर्स, प्यारे प्यारे लिसनर्स, हाँ जी सर आप, हाँ जी दीदी आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल हाय हेलो कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ये व्हाट्सएप का नंबर है। एंटरटेनिंग शो की गारंटी के साथ हाजिर है आपकी दोस्त अश्विनी। एंड आज का सवाल, यस एक थियोरी भी सुनाऊंगी, लाइफ थियोरी, पोयम सुनना चाहेंगे मेरी लिखी हुई? आप लोगों के जितने वोट्स आएंगे, जितना आप लोग मतलब जितने लोग कहेंगे उस हिसाब से डेफिनेटली सेकेंड आवर में एक पोयम सुना सकती हूँ अपनी लिखी हुई, तो ज़रूर बताइएगा पोयम सुनना चाहेंगे क्या। एंड आज का सवाल, आहा बहुत बढ़िया सवाल है। एंड सैंडी जी जब शो से निकले उसके पहले हम दोनों ने बड़ा तगड़ा डिस्कशन किया इस मेरे सवाल पे। अब मेरा सवाल क्या है, हम सभी देसी लोग हैं, एशिया से आए हुए लोग हैं। अच्छा, अगर आप एशिया से भी यहाँ पे नहीं आए, जहाँ कहीं से भी आए हैं, लेकिन आप और हम हैं एशियन ओरिजिन, तो ये जो देसीपन हम में है ये इतना कूट कूट के भरा होता है हमारी नस नस में कि वो देसीपन जो है वो निकलता नहीं है। सो मेरा सवाल आज आप सबसे ये है कि ऐसा कौन सा देसीपन या ऐसी कौन सी देसी चीज़ है जो आपके यहाँ पे होती है, जो ट्रेडिशनली आप फॉलो करते आ रहे हैं बिकॉज आपके फैमिली में भी वो चीज़ें हुई, या इन जनरल बिकॉज यू आर अ देसी पर्सन, राइट, एशियन ओरिजिन पर्सन है। सो फॉर मी इट्स माई झाड़ू, जी हाँ, जो झाड़ू होता है ना, झाड़ू पोछा कटका बर्तन वाला झाड़ू, दैट्स झाड़ू। सो ऑब्वियसली तीनों प्रकार के घर में है, हूवर्स है, वैक्यूम क्लीनर्स है, वो झाड़ू पोछे वाला नया रोबो वो भी है, लेकिन अंटिल अंडस मैं अपने हाथ में झाड़ू लेके जब तक स्टेयरकेस क्लीन ना करूँ या फिर जाले ना निकालूँ या फिर झाड़ू ना घुमाऊँ, मेरे अंदर की इंडियन महिला जो है वो तब तक खुश ही नहीं होती है। सो ये एक चीज़ है जो मैंने देसीपन अपने अंदर बिल्कुल रखा हुआ है। आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करते हो जो देसीपन आपको लगता है, हाँ हाँ आई एम सो प्राउड ऑफ इट, है ना? सो फॉर मी इट वॉज झाड़ू। आपके लिए बताइए कौन सी चीज़ें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपीज एंड 50 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है लाइका गोल्ड।

0: Football Score Updates, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: France and Morocco के बीच मैच शुरू होगा आज रात 9 बजे. And don't forget, you get your 15% 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Laika.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: So I've asked all of you ki kaun si aisi desi habits hain aap sab mein jo aap कहते हैं ना बड़ा सीना तान के बड़ा छाती ठोक के एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ दिस कि यस मैं तो मतलब कम्प्लीटली देसी हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ पे तो होनी होनी है. बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर्स एंड बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आ रहे हैं आप सभी की तरफ से. किसी ने कहा स्टील का ग्लास एंड प्लेट एंड कटोरीज, यस. किसी ने कहा मसाले का डब्बा, किसी ने कहा यू शेप्ड टंग क्लीनर, यस एग्जैक्टली. सिलबट्टा भी होगा ना, आई एम श्योर किसी के पास में सिलबट्टा होगा जिस पर चटनी बनाते हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड, आई वेंट टू हर प्लेस लंच के लिए, हम लोगों को इन्वाइट किया था उसने, एंड देन शी गॉट ऑल दैट हरी मिर्ची एंड लहसुन एंड अदरक एंड धनिया एंड जीरा एंड नींबू एंड शी मेड दैट सिलबट्टे वाला चटनी एंड दैट वॉज ओ माई गॉड अमेजिंग. ओके, तो यादों की बारात की तरफ आप सबको ले चल रही हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे आज की लाइफ थियोरी के बारे में. कौन सी थियोरी लाई हूँ? इंटरेस्टिंग है, छोटी है, सुनते रहिए. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax. I've booked the Uber already.
5: But how? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simzy before we left London.
5: Simzy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: आपके सामने एक रेड बटन है.
9: दबा दिया.
8: नहीं दबाना था.
10: The madness is back. धमाल 4.
11: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
10: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4. Directed by Indra Kumar.
12: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
10: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
13: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आके कैसे आ जाता.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel at all protected.
3: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई। sonatours.co.uk 14 डेज कनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027। Book before the end of July and get 600 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
5: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स नियरली 33 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. रोज किसी न किसी लाइफ थियरी पे बात करती हूँ. आज बात करने वाली हूँ द पेपर थियरी पे. तो जो A4 साइज का पेपर होता है ना, जनरली हम लोग प्रिंट आउट निकालने के लिए जो पेपर लेते हैं, ठीक है, उसे लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. तो उसे जब आप ऐसे पकड़ते हैं नीचे से, तो वो पूरा पेपर अपने आप नीचे झुक जाता है. एंड जब उस पेपर को आप हाथ में लेके कम्प्लीटली उस पर बहुत सारी क्रीजेस लाते हैं, पूरा उसका एक बॉल जैसे बना लेते हैं, एंड फिर जब वो पेपर खोल के आप पूरा स्ट्रेच करके जब पकड़ते हैं, तो वो पेपर जो है वो स्टिफ रहता है. अब इसका तात्पर्य हमारी लाइफ से क्या है, देखिए, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं झेली, चैलेंजेस नहीं झेले, स्ट्रगल्स नहीं देखे, वो लाइफ को जीने के लिए उसमें आने वाले जो भी इश्यूज रहते हैं उसके लिए उतने तैयार नहीं होते. मे बी द फैमिली बैकग्राउंड के पेरेंट्स बड़े प्रोटेक्टिव थे, सब कुछ प्रोवाइड किया था, लोगों का अपना नज़रिया लाइफ की तरफ देखने का, वो भी एक चीज़ें होती हैं. अब कुछ लोग होते हैं जो खुद को चैलेंज करने में बिलीव करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें एक सांचे में ढल के रहना अच्छा लगता है. नथिंग इज़ बैड, नो जजमेंट्स हियर. लेकिन जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को चैलेंज करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी हालत भी उसी क्रीस्ड पेपर की तरह होती है, क्योंकि कुछ अलग करने के लिए वो निकले होते हैं. और जब कुछ अलग करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकल के इंसान कुछ करता है, चाहे पुरुष रहे, चाहे महिला रहे, चाहे कोई भी इंसान रहे, प्रॉब्लम्स तो आती हैं. और ये प्रॉब्लम्स जो हैं, इसमें होते हैं फेलियर्स, इसमें होता है हार्ट ब्रेक होते हैं, इसमें कितनी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे आप हताश हो जाते हैं, मैं इसे कैसे शुरू करूँ फिर से, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये सारे सवाल आ, चलो मैं गिव अप कर देता हूँ या कर देती हूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं. लेकिन फिर हिम्मत से इंसान वो जो खड़ा हो जाता है कि मैंने अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, वहाँ तक पहुँचना ही है. तो उनकी स्थिति एग्जैक्टली उस पेपर की तरह होती है कि भाई इतनी सारी फेलियर्स चीज़ें देख ली ना, कि अब इससे ज़्यादा और मेरी ज़िंदगी में क्या आएगा भाई, आई कैन फेस एनीथिंग. सो ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ होती है ना, वो बिल्कुल अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाती हैं, सक्सेसफुल होती हैं. सो दैट वॉज द पेपर थियरी. आप भी देख लीजिए कि वो जो क्रीस्ड पेपर की तरह आप अपनी लाइफ को बनने देते हैं, या बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं कि नहीं भाई मुझे कुछ अलग नहीं करना, मुझे खुद को चैलेंज नहीं करना. लाइफ है आपकी एंड चॉइस है आपकी. कैसी लगी आज की लाइफ थियरी, जरूर बताइएगा.
0: ये है लाइका गोल्ड.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, मोहम्मद रफी की आवाज में तीसरी मंजिल से सुनाया आप सभी को तुमने मुझे देखा। अमेजिंग अमेजिंग, बड़े प्यारे गीत हैं। बिल्कुल प्लेलिस्ट जो आपके लिए लगा रखी वो आप सभी एंजॉय करने वाले हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे चल रही है लिस्ट, सारे लिस्नर्स अपने अपने देसीपन की चीज़ें हमें बता रहे हैं। अंजू ने हमें कहा है कि भैया उनके यहाँ पे मटका है, जो मिट्टी वाला मटका होता है। दो तीन और लोगों ने मुझे मटके के बारे में कहा है कि यार दैट इज़ समथिंग विच वी हैव देसी। किसी ने कहा मेरे बच्चे जो हैं जो हमारी मातृभाषा में बातें करते हैं। एग्जैक्टली यस, बीइंग अ मराठी गर्ल माय किड्स दे हैव टू स्पीक इन मराठी घर में, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल फॉर न्यू पीपल जो इस कंट्री में आए हैं। देखिए आपके बच्चे और आप बाहर जाके अंग्रेजी में आप बात करने ही वाले हैं, वार्तालाप करने ही वाले हैं। ओहो, आई जस्ट लव माई हिंदी एट टाइम्स, वार्तालाप। पर घर में जो है बिल्कुल अपनी मातृभाषा में, अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में ज़रूर बात किया करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फॉरगेट दैट, माय डॉग पीचेस, यू ऑल नो अबाउट हर, ब्लैक लैब्राडोर, नाउ शी इज 7 years old। She understands Marathi like anything. मतलब at times we have to spell something. Now she understands biscuit इतना अच्छे से. So when me and my husband we are communicating something about biscuit, so we spell BISCUIT, you know. And I'm sure ये सारे pet parents ना उनको भी ये समझ में आ रहा होगा. So ये देसीपन इतना ज़्यादा देसीपन है कि इनफैक्ट जिनके घर में pets है ना वो भी बहुत ज़्यादा देसी है. Okay जी, next track, this is one of my favorites, लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म से लाई हूँ आप सभी के लिए ये गीत. वॉल्यूम अप करना चाहते हैं जरूर।
1: द इवनिंग शो विद अश्विनी।

0: latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208782883 और विजिट

0: Welcome, this is the second hour of the evening show with Ashwini on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. इस हावर का आगाज हमने किया था सुखविंदर सिंह की आवाज में 1947 अर्थ विच वॉज रिलीज इन 1998 रुत आ गई रे दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स. जब से तुमको देखा ये तो बड़ा रिफ्रेशिंग गाना लगता है, बड़ा हैप्पी जोन में लेके जाता है ये गाना. आशा भोसले ने किशोर कुमार की आवाज़ में कालिया फिल्म से सुनाया ये गीत. कुछ देर में आपको सुनाएंगे एक पोयम एंड उसके बाद में गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं. द इवनिंग शो विद अश्विनी होता है मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 बजे तक. थ्रिलिंग थर्सडे मना रहे हैं इस आवर में, कल होगा फैंटास्टिक फ्राइडे, मतलब आहा फुल ऑन डांस मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन और कहीं नहीं बस यहीं.
1: Another huge giveaway is coming. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिल रहे हैं 127 रुपए और 50 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई. दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स.

0: Score Update, brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: France और Morocco के बीच में मैच शुरू होगा रात 9 बजे. And don't forget, you get your 15 minutes free legal advice with our sponsors Rack Law if you mention Laika.
0: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
1: लता मंगेशकर की आवाज में शागिर्द फिल्म से रुक जा ए हवा, ये गीत आप सबको सुनाया था. एंड इसके पहले तो हमने जो जबरदस्त दो गीत सुनाए थे उसमें हम सबको मजा आ गया कि सेकेंड आवर में आ गए हैं हम. जी हाँ, आप सभी ने कहा बिल्कुल सुनाइए अपनी कोई कविता, तो सुनाते हैं आप सभी को. दिस इज द पोएम एंड इस पोएम का नाम है ख्वाहिश. हम सभी के दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, तो उसी पे छोटी सी ये पोएम मैंने लिखी है. ख्वाहिश ख्वाहिश है मेरी, मैं घूम लूँ एक बार, बेबाक बेखबर मस्त झूम लूँ जार जार. न जवान न बूढ़ी मैं, अधेड़ उम्र में छबीली मैं, उड़ती हवा संग उड़ चलूं, ख्वाहिश है मेरी बहती हवा को चूम लूं. पहली थी कुछ नादान कुछ नासमझ कुछ अल्हड़ सी मैं, बालों की सफेदी में अब कुछ समझी कुछ सुलझी सी मैं, कुछ संभली कुछ बहकती थोड़ी अभी भी अल्हड़ सी मैं, बहती नदी संग एक बार घूमती चलूं, ख्वाहिश है मेरी बहती हवा को चूम लूं. जितनी थी जिम्मेदारियां सब निभा ली, जितनी थी जिम्मेदारियां सब निभा ली, रिश्तों की खुशबू भी जान ली, कुछ खुशियां मनाते थोड़े गम को झेलते चली मैं, जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते चली मैं, कुछ को चाहा न पाकर भी खुश रही मैं, कुछ को चाहा ना पाकर भी खुश रही मैं, कुछ को पाकर चाहने लगी मैं, अपनी अदाकारी को अपनी ही वाहवाही देते चलूं मैं, ख्वाहिश है मेरी बहती हवा को चूम लूं मैं, बेबाक बेखबर मस्त झूम लूं जार जार.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At DFS, we know there are so many places to sit in summer, like a beach towel or
3: a flying seal.
2: But the most important is the one you come home to. From relaxing recliners to stylish sofas, our summer sale has just the thing for you. DFS, what's your thing?
0: This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
4: आपके सामने एक रेड बटन है. नहीं दबाना था.
5: The madness is back. Dhamaal 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamaal 4. Directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
5: Get ready for the biggest family entertainer in cinemas worldwide from the 10th of July.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता.
9: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
11: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208 767 7547.
12: Laika Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
13: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.
15: Emotion of the day.

0: है लाइका गोल्ड। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
1: New episode number 24 is out to watch and to listen to this one. Ye topic hai East African Asians. Episode sheds light on the roots and identity and journey of East African Asians. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: Laika Extra is here. This is Ashwini in for Anisa Nazir on The Evening Show.
1: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। तो 8:46 हो चुके हैं एंड हम लोग ज़रूर बात करने वाले हैं पिज्ज़ा के बारे में कि पिज्ज़ा अनहेल्दी है, डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन इटालियंस इतना पिज्ज़ा क्यों खाते हैं और उनके वज़न क्यों नहीं बढ़ते, इसके बारे में बस बात होगी कुछ ही देर में।
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: काजल्स कुटिल फॉर एवरी सेलिब्रेशन, एवरी मोमेंट एंड एवरी अनफॉरगेटेबल एंट्रेंस।
6: डिस्कवर काजल्स कुटिल साउथहॉल, द ग्रैंड न्यू डेस्टिनेशन फॉर एलिगेंस एट 159 द Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Laika listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit kajalscouture.co.uk.
7: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total riz, है ना?
8: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
7: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें

0: 81502025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.
2: Ye hai. Leica Gold. Leica Gold.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: For £1, you'll get 127.89 Indian rupee, 372.86 Pakistani rupee, 449.5 Sri Lankan rupee, 165.19 Bangladeshi taka, 86.02 Afghan Afghani, 173.22 Kenyan shilling, and 1.34 US dollars.
4: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan, or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
3: Gold is currently trading at £99 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets. One of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: तो जरा बात हो जाए पिज्जा के बारे में कि कहा जाता है पिज्जा हेल्दी नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता। अब इटालियंस तो इसे दशकों से खाते आ रहे हैं, उनके वजन तो नहीं बढ़ते, उनकी तबीयत सब ठीक रहती। तो रियल पिज्जा, ट्रेडिशनल नेपोलियन जो पिज्जा होता है, इट्स मेड विथ फोर सिंपल इंग्रेडिएंट्स, कोल्ड फर्मेंटेड डो विच इज ईजियर टू डाइजेस्ट, सैन मार्जानो टोमेटोज विच इज रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, फ्रेश मोजरेला, नेचुरल प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है। अभी हुआ क्या है, चेंज क्या हुआ? तो फर्मेंटेड डो को रिफाइंड फ्लावर से बनाया जाता है। अभी टोमेटोज की जगह शुगरी पेस्ट यूज कर ली, मोजरेला की जगह प्रोसेस्ड चीज यूज कर लिया, ऑलिव ऑयल की जगह सीड ऑयल कर लिया, फ्रेश टॉपिंग्स की जगह प्रोसेस्ड मीट्स। तो बेसिकली यही है कि इटली हैज वन ऑफ द लोएस्ट ओबेसिटी रेट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि उनका जो पिज्जा बनता है वो सारे उन इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है जो मैंने आपको अभी बताया था। वही होता है ना कि कुछ चीज़ों में जब हम चेंजेस लाते हैं तो वो जो चेंजेस हैं वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है। तभी जो है इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट को लेके, अपने फूड को लेके ज़रा कॉन्शियस रहे। याद है सैंडी और मेरा जब बैंटरिंग चल रहा था जब मैं आई थी, व्हेन ही वाज हैंडिंग ओवर द शो टू मी, सो वी वर टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड एंड यस, बिकॉज आई रीड अ लॉट अबाउट हेल्दी फूड एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू बी इन हेल्दी फूड, तो समझ में आ जाती है कि चीज़ें कहाँ कैसी चेंज होती है। ऑब्वियसली उम्र का तकाजा होता है, और देखिए आपकी बॉडी जो है एक मशीन ही तो है, तो बॉडी का हर एक जो हिस्सा है, हर एक जो ऑर्गन है, धीरे धीरे धीरे उस ऑर्गन का भी तो काम धीरे धीरे स्लो होते जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मेंटेनेंस लगता है। बॉडी मशीन है भाई, इसके तरफ ज़रा ध्यान दीजिए। अपनी बॉडी, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, वर्कआउट कीजिए, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, ये सारी हेल्थ, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब आपके ध्यान में कुछ चीज़ें नहीं आ रही और आपके आसपास के लोग अगर कुछ पॉइंट कर रहे हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड, तो ज़रा ध्यान से सुनिए, सोचिए एंड एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि कई बार हमारा बिहेवियर हमारे ध्यान में नहीं आता है, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो हमारे बिहेवियर को बखूबी जानते हैं और वो पॉइंट आउट भी करते हैं वो चीज़ें जिसके लिए वो कंसर्न्ड है। ओके जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पूर्णिमा फिल्म से आपको सुना रही हूँ इस आवर का आखिरी गीत।
1: Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network. This is Ashwini, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: Leica Gold.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0200. 9903965757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
8: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
11: साउथ हॉल ट्रेवल, auto protected.
12: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208951011.
13: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Lyca Radio और Lyca Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lycaradio.com।
14: द इवनिंग शो विद अश्विनी।
15: दिस इज लाइका।

0: Welcome. This is the third hour of the evening show with Ashwini on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. इस आवर का आगाज किया उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज में कयामत से कयामत तक, which was released in 1988. ओए होए होए होए क्यूट से हमारे अपने आमिर खान. आमिर खान फिलहाल खबरों में है. जी हाँ, तीसरी शादी उन्होंने की, उसको लेके वो खबरों में काफ़ी छाए हुए हैं. इसके बाद हमने सुनाया आपको अजनबी फिल्म से गीत, हम दोनों दो प्रेमी, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में. बढ़िया सी प्लेलिस्ट लाइंड अप है, सुनते चलिए, एंजॉय करते चलिए. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीज एंड 50 पैसे. एंड साथ में डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय-टू-लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. T's and C's apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: शकील बदायूनी का लिखा हुआ गीत आप सबको हमने सुनाया. ये तो कव्वाली थी फ्रॉम मुगले आजम विच वॉज रिलीज्ड इन 1960 एंड लता मंगेशकर शमशाद बेगम की आवाज़ में. ये जो कव्वाली है ना, ये ना वैसे चलती हैं छुरियाँ दैट टाइप कुछ, तो ये जो कव्वाली है ना, मज़ा आ जाता है इस कव्वाली को सुन के. और बिल्कुल आज हम आपको सुनाएंगे गज़ल. गज़ल सुनाती हूँ कुछ ही देर में, उसके पहले ज़रा बात करते हैं इस कॉन्टेस्ट के बारे में जो होता है फिनलैंड में. सो फिनलैंड हैज़ अ वाइफ कैरिंग कॉम्पिटिशन एंड द विनर रिसीव्स हिज वाइफ्स वेट इन बियर. तो अपनी वाइफ को अपने कंधे पे लटका के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इन लोगों को जाना होता है, और जो इस रेस को जीतता है तो उनकी वाइफ का जितना वज़न होगा उतने ही वज़न की बियर उन्हें पीने मिलेगी. अब ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ था 1992 में, एंड जो मेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं बिल्कुल अपनी जो वाइफ होती है उनको अपने कंधे पे लटका के ये जो भी डिस्टेंस है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और जो जीता है तो सवाल ही नहीं, शायद पूरे कुंभे को वो बियर पिलाते होंगे. अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, कई बार मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों को देखने में. एंड या मतलब पार्टिसिपेंट्स भी अभी बेचारे कितने तो मतलब ताकतवर होते होंगे ना, क्योंकि डिस्टेंस भी आई एम श्योर वो बहुत पास में कोई डिस्टेंस तो रखते नहीं होंगे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए इजी हो जाए, लेकिन मज़ा तो आता होगा. जब भी ऐसे कोई कॉम्पिटिशन्स होती हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, तो या इट्स ऑलवेज फन, है ना. तो वीकेंड आ रहा है भाई, क्या आप भी किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वीकेंड्स के आपके क्या प्लान है? आई एम श्योर बिल्कुल मंडे ट्यूजडे से सबके अपने अपने वीकेंड के प्लान शुरू हो जाते हैं. कल आप और हम मनाने वाले हैं फैंटास्टिक फ्राइडे, तो खाना पिज्ज़ा खा के बैठिएगा. देखिए आप पिज्ज़ा खा सकते हैं, मैंने आपको बताया कि पिज्ज़ा में क्या क्या चेंजेस हुए, तो ओरिजिनली जो पिज्जा बनता है वैसे बना के देखिए घर पे, हो जाएंगी चीजें, है ना. हेल्दी खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. और अब आपको जगजीत सिंह की आवाज में सुना रही हूं ये गजल. आहा, आई जस्ट लव दिस वन, सुनिए
0: गजल.

0: मुकेश जी की आवाज में हिमालय की गोद में, विच वॉज रिलीज इन 1965, उस फिल्म से सुनाया ये गीत। उसके पहले जगजीत सिंह की आवाज में जो आपको गजल सुनाई, मजा आ गया ना, सब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए कि बहुत बढ़िया गजल थी, इसीलिए तो एक दिन गजल एक दिन कवाली आप सभी को हम सुनाते रहते हैं, क्योंकि वेरिएशन भी हो जाती है और ये चीजें थोड़ी कम सुनने मिलती है ना, कवाली एंड गजल। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक दिस अ फीचर इन दिस शो। एंड हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। सो सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ बहुत सारे फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, वहाँ जब पहली बार कोई किसी से मिलता होगा तो वो कहता होगा, अरे हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था और या जैसे मुझे सोशल मीडिया पे दिखा था, राइट। तो एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर आप और हम साथ में हैं, एंड दो ज़बरदस्त गीत आप लोगों के लिए लाइंड अप है। दिस इज़ द इवनिंग शो विद अश्विनी एंड यू हैव ट्यून्ड इन लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: लाइका गोल्ड।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नज़ीर ऑन द इवनिंग शो। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
5: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gama Pa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Making summer currency update sponsored by LemFi Mobile App. Network. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Pound you'll get 127.94 Indian rupee, 372.91 Pakistani rupee, 449.6 Sri Lankan rupee, 165.23 Bangladeshi taka, 85.76 Afghan Afghani, 173.3 Kenyan shilling, and 1.34 US dollars.
6: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
6: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £99 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स नियरली 43 minutes past 9। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मैं बता दें, हमारी गोल्ड नाइट सर्विस ओवरनाइट सर्विस है, ज़रूर सुनिएगा। काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, नींद नहीं आ रही, चुपचाप बैठ के नेगेटिव थाट्स में मत जाना। गोल्ड नाइट सर्विस है, ज़रूर सुनिएगा। एंड लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड टू, हमेशा की तरह बस इतना ही कहूँगी भाई, लाइफ जो है ना बहुत सुंदर है, और ये सुंदर लाइफ फिलहाल तपी हुई है जिस तरीके से हमारा यूके पूरा तपा हुआ है बिकॉज ऑफ धूप एंड सूर्य देवता। तो अपने आप का ख्याल रखिए प्लीज़, अगर ज़रूरी ना है तो ना निकले घर से बाहर। ठंडी हवा और ठंडा पेय या कुछ तो लेके बैठें। आई लव माई हिंदी एट टाइम्स। ठंडा पेय, पेय इज ड्रिंक, ठंडा ड्रिंक मतलब छाछ, लस्सी, ऐसे कुछ। हाँ।

0: फैंटास्टिक फ्राइडे, यानी कि खा पी के हो जाइएगा तैयार। ढिंचक ढिंचक गीत लेके आएंगे क्योंकि आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी। एंड फुल ऑन, ये जो ना कभी आप यहाँ पे स्टूडियो में आके देखोगे ना तो ऐसे स्टूडियो हिलता है ऐसे लगता है। काजल का साथ दीजिएगा, कल सुबह शाम 7 बजे मिलते हैं आप और हम। गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।
1: ये है लाइका गोल्ड। This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal.

0: इज लाइक अ गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Daniel Prime Location
2: High Appreciation
3: in Dubai
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com T's and C's apply
5: You know how fans shout at football matches
6: Oh, wake up!
5: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocenter.org.
7: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

गए गंगाराम हम मेरा तुझे भी सलाम मेरा तुझे भी सलाम हम तेरे हैं गुलाम हम तेरे हैं गुलाम।

तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम मेरा, तुझे भी सलाम।

0: लाइका गोल्ड।
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
3: साउथहॉल ट्रेवल At all protected. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner, Like रेडियो।
5: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।
6: नजरों से कह दो जी।

0: ये है
1: लाइका गोल्ड।
2: आपके सामने एक रेड बटन है,
3: दबा दिया।
2: नहीं दबाना था।
4: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4।
5: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
4: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी। रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार। वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ।
6: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आके कैसे आ जाता।
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Bollywood ke legend kalakar. Sirf Laika Gold par.